0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुन कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो केरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य क्या डूं
3: मीहा को तिमाया वाहक दक्का मंदायरुगा एना एने आमुखातब को वाहक दक्का आयरुगा बस बुनानी अलगंडु कम वाना तिमा कम वाना अनकुन्ना आमुखातब को मिबुननी देम्मेतिया विदाल वीये तिमागे नफसम मुखातब को फा एहम मीहे के गातुगा वाहक तके दन्ना वने एकम अनका को तिमागे गातुगा इच्छे बुनायरुगा रीत बहु मिबुननी Demet Vidal Vie, Algon Ming Amil and of some Mimukat book of Enegatugam Bunani, Demet Vidal Vie
2: Divisaka Viti, Divibahoga Gavadan Ehtram Kurava.

0: मुन्ना कोबा की है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगला खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में क्या दक्का फुंगा था
2: मुन्ना थी है बरको वेंडना हिंका में ने अफन थी कं कोलन ना
1: तिको दुं हाउ दा है रंगला है तिहें मुन्ना आए कही आहो हाल बला फे मुन्ना रकां कं को देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: हाँ वाफलो
1: ओए
0: देखी बलो मिफा हारु वी गोई
1: हाँ किया बला
0: आ फंडिया रु इसी फा हो मिहारु किता दोस में ओवी एक अम्म को ये ने कंग एव्वेस आदबे एव्वेस नो दे ये मागा मुं वैक्के एव्वेस नो कुरे
1: आए के दों कमरना मिहारु वी नो वी एम्मेन ना साफ हुए चे रस के फान वे इन्ने वी इंसाफ गायम कुरम बेनो फुलवे फा कुरी के दे फंडिया रु ना आदबु देनी रस के फान दे के बीरुं निकमेति मीहा के वाक आडुना हा दाउवा बेरु कोल्लीमा
0: आते दे एकम को मी आफंडी आरो जेहिलु मेन्ने ति रस्केफान शरीयत के मजली हा हाजिर को ए निकमेति होळबार को के दाउवा इंसाफुम बल्लवाफे रस्केफान मिस शरीयत कियम में वडाणनेवे
1: अल्हम्दुलिल्लाह मी दोहर में के मी गाउम का अतुल इंसाफ गाय वेजे वेरी ए रयित तफातुन को हग नसरु लिबिजे शरीयत हिंगागने गाउम हमजे हुंग अतु वेजे
2: मी हादसे की उस्मान रस्केफान के दुवसवर हिंगाफावा हादसा है उस्मान रस्केफान के खोली नमफुलकी सीरी सुंदरा महारदु मी रस्केफान के माळस मडल देखुनुबरी फेहेंदु बेफळे एके गयगतुं कुरियरम कामयाबी तं हासिल कुरमंगस रस्कम वेस्लिप वडागे राधावळिं एगे गतुगा मी रदुंगे पप्पा फळकी असुल्तान यूसुफ कलमिंजा सीरी बुवनादित्ता महारदु मम्मा फळुगे नमफुळु एगे कन्ने असुल्तान दाऊद कलमिंजा सिरी सुंदर बुवन महारदु रस्कम इस्वे वडागति मीलादिन तेरस्तेक एवणहरु मिरस्कन नेमुमकंगाई मीलादिन तेरस्तेक हवणहरु रस्कन कुरेवी फस सहरकमगा राधावळी कपुने फावे मे तीमु गेदारिकोळके एम्मे फहुरदु मि ड्रामा लियुमका आळकंड असलकबेली अलमरहुम अब्दुल हकीम हुसैन मणिकुली वाफावालियुमे एई नवारस्तेक हद्दी नुवनहरुगे जुलामहु दिवेहिराज्यका कुरि नेरुनु मजल्ला एकमवा अमाज मजल्लागे अड्डी हतरवन अततुगा दिवेहि फंडियारेगे अदुल इंसाफगे वरुगदकं मिनम गालिये फावालियु ड्रामा कुलमुका बैवेरवी मोहम्मद शम्मोन मोहम्मद रामीज हुसैन रशीद मोहम्मद निहान अजीजा फारूक सामिया अहमद वहीद मिजना अहमद लशन अहमद मूसा रश्वान आदि मोहम्मद शाफी ड्रामा लिए उफद्दा एकलवाली अड़गन आयशत नईमा अस्सलाम वालेकुम।

0: देन किया बला फिर तो मदवस कहीं नहीं था साड़ी साड़ी को देन उड़ाया था यंग ओ ओड किया बला
1: देन उड़ाने दो
0: हाँ द चस्पिंग ने गोता का नेती तरंगल कुछ
1: आहरे नूपला में
0: देन नूबेलियस फेंडना ने दो
1: आहरे मेरी अस्तुवारा फू ही वेफा
0: क्यों वेगे ऑफिस खड़ा ही था फुरतम दो होवे बॉस के इशारे तें आई था
1: रूपशा अरे सीरियस वे पाला
0: सीरियस को शे मिया हनी मी हुं दक्का वाहक देंगने का फिल्म तक का वाहक तक उम्मीस
1: एक हाल इब्बस का मैं नोए बॉस वारा रंगलो ऐ वारा अहलाक वेस रंगलो मी ही इंगी वनी एम में नावेस बदल वे वाहक तक कनी रंगी होती रामाय को
0: ओ ऐहन ता दें कौन कम का ता फूही वेगेंते वलनी
1: मैं तो मिहार रहे रही रोज से ने आदि रेयुमान का आदि में नोवे फोन है बिस नुनगा की ता फार मिहार गुलाफी
0: माँ बिजी दो हकी कम वेदान न आलिफुला कं हियला एक अधूरे नुए वे ने कम बोड़ नुए
1: ऐ नहीं रिहिंग मनचे हिफा आह नंगी के एक असल मिहार रहा रे देर वे चजो बद्दा

0: Wow. Arle ha da rangale. Ahari ngi kore mage fondo santarne tunikama.
1: Kiwekin ehem baambi. Mir yuma neewa da ha hindako. Mayra ge kame handa nu ne tene.
0: Ehenta. Ama gastu gata lahunti celebrate kurani.
1: Aike. Bodang ufa kuddenge.
0: Yuma ha da rangale. Wara lobibe.
1: Bona wahake. Mi windu. Mihen jaha ha hindaku midie mihen guli fawani
0: irad kore via
1: den ke ko falavala
0: okay
1: ka ko message kurani
0: nenge adi no balam ninnu
1: ha da hinga manu jeifa
0: ale hinga manu jeifa nu priumane ves fenna ninnu aharen phone nu balam ninnu
1: ekam ko aharen balana gene phone
0: ahareng phone mi buni mi phone denvi
1: ti phone gene
0: ale tha tu vetse den ti hennu he dis phone denennu atu da kanu anennu ti hen
1: atu da gim spadana masha belene hinu kurati benum ha gotaka uleveniye mi kaaku ge number e save nu kommi kita faharu me dwes gula fe boy kive nu bunan tini
0: riuman ti den kon kame ar ti ofi ho gule na tha ge number e
1: den kive king he save nu kuri den mi ko vibe group e fun group
0: ale ti class group number dalu ko fa riuman ki ne vegin ti uleni ahare ne riuman ka ti kan kam ga sual en kuramennu
1: sual kurane kame nu hunnaane ehem venu kuraveni
0: आहरण की विस्वादों फेदे का मैं नॉन नान
1: तीन ने ये निशान का वाह कर देखी रुस मीहा या वी कोई मत दोषी में
0: अरे की विगं तीन ती वाह कर दक्कनी मशक नुवे गोते
1: अति बुन्ये मशक की सामासा कुरा मीह के
0: असलोरी उमा ने की नहीं वनी आहरण इच्छे पुनीं ता अपना ना देन होंगे तो टच्चा फोलो नोइरो
1: ए फ्रेंड
0: फ्रेंड को अगेन साइकिल विस दो वी में आरे नुपुन में नोचे
1: माशा फारलनी था
0: फारलन जहेनी सिर्रुं कामे कोरन्ना वर फालुग देमी हुं कांगोस सायगोस दुवंगोस फिल्मगोस तिउलुनी आरे दोषिं इहर रेवस प्रीमियर देमी हुं अतुगे हिफ़ेगिंग गोस वर्न्ना निको एहम बेगिनेनु मगे बात्रे सेलेब्रेशन लास्वी रिमान ही कुरनी आरे गे विंदा कुले मंती दनी वर स्मार्ट को कमत्ता
1: की के कियं
0: दिउलुनी If is kama kanula apatu hanna shakku kurani kine mi varun uleni
1: maaneki
0: arim ben mi miha hisabu mi sofa nimmala
1: tiden varan evwa gote etchen hala ra nuje di hisaba daka
0: mi gulum peshu nin sure eke duas taka waki wakin bala bala visnala bala kama kanula mi kala kom mes masale jasamennu Tengah mah mini malani, air mitani.
1: Tiada nuhada, madu kupada.
0: Tengah air madu kurun ule, dani, warang heo doa.

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो हो केरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य चाडू
3: එංහා 431 kHz medium wave 890 MHz FM band
4: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩෝ

0: दुनिया के हतरु पितु
1: राजेगे उतुरा देखुनु
0: खबरा मालूमात
1: हुट्टु मेन्नेति सव्वीस गडीरु
0: दिवहि राज्येके अडु
1: एंहा सतस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
2: दुनियावी तिरियुलुम के उफावरी कमा स्वर्गे के मतिवेर नियमता वासिलवुमा
3: सालिहंगे पकीचा
2: अलुकम के रीति आदतका अखलाव के मतिवेरी सिफता लिपिगतमा
3: सालिहंगे पकीचा
2: मै रसूला के सुन्नत के मच्चा इमाम नववी रहमहुल्लाह लियुबाफावा रियालु सालिहीन मिफुतुगे बाबु तकुगे शरहाइन
4: हेंदुनु दज्जानु के वाह के आदे बेकम हवीर वीर से बेबे कदुन एकम के बिरवरकम सिकुंडियंग ए नेगिफावा तसव्वुर फिला नुदा क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंगे वडा अगेन सवाल करन तिबे कदुन किहिने तोय
2: अलुकम के आदतका अगीदाया रीति अखलाव के मतिवेरी aguhuri eta filawalu take
5: islam deenuga allah subhanahu wa taala warab boda me bar walwani allah han ekani alukan kuruma shiruku nukuruma anga wafa dem mi anga wani emme ha me sakun ebbawanta baige gotu gawuma
2: adita duha buda duhuge minduru deech hairu repeat homa adi burasati duhuge hindunu aggadi tirihu adi angara adi hukur duhuge regandu dihagadi tirihu नुवदी हमें गहर्ट्स तीनों के अड़ों
6: मामा अलगन मैंने वाणी आदि थोड़ा किया वं तीवाह का बुने मामा वरंग उफाव जे
7: बाप्पे में वित्त भेज दारफल के क्यों मां कुरंजे कोम्बे कमे कुरं था जारा अब देस बाप्पे या मामा या कुरा उम्मीद के दारफल की किया वाग
6: मोड़मी हकम इरादा